0: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेट पर।
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेट पर।
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Bairune Mulk Pakistaniyon ke jazbae hubbul watani ka shukriya. जिन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट को शानदार कामयाबी से हमकिनार करवाया। बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों ने रोशन अपनी कार के जरिए पाकिस्तान में शरीयत के ऐन मुताबिक फाइनेंसिंग से गाड़ी खरीदी और अपनों की जिंदगी में खुशियां फैलाई। तुम जुड़े हो तो बढ़ा है पाकिस्तान। तो फिर आज ही स्टेट बैंक की वेबसाइट विजिट करें और किसी भी इस्लामिक बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं।
4: अमन की फ्रीक्वेंसी, शऊर की आवाज और खिदमत की पैगाम रेडियो मन 88.4 खरक।
5: ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों, ओजड़ियों और दीगर बकायात गैर मुतय्यन शुदा जगहों पर हरगिज न फेंकें। ये अमल बदबू, तअफ़्फ़ुन और वबाई अमराज का सबब बनता है। मजीद बरा खुली जगहों पर फेंकी गई आलाइशें गिद्धों, कौवों और दीगर परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं, जो सिविल एविएशन के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं और फिजाई ऑपरेशन के लिए संगीन खदशात पैदा करती हैं। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर की जानिब से फराम करदा बैग्स में आलाइशें बंद करके अपने घर के सामने रख दें, ताकि मुतलका सफाई का अमला उन्हें बर वक्त उठा कर मुकर्रर जगहों पर मुंतकिल कर सके। बराए करम सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं, माहौल को आलूदगी से महफूज रखें और अपने शहर को साफ सुथरा रखने में इंतजामिया का साथ दें।
6: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
7: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
6: وی اللہ دوم را زر سنگا
7: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
6: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
7: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی
8: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن پر امن محبت اور آگاہی کی آواز ہماری نشریات انہیں مثبت پیغام پلائیں اور معاشرے کو جوڑنے میں

आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज़।

अच्छे बिल्कुल वेलकम बैक न्यूज़ अलविदा सुन बिल्कुल सरोवर का बोले यो जहान वाला यो नाड़े वाला यो जहान वाला बेहद बेहद बेहद वाला बिल्कुल अर्जिंग प्रोग्राम से अक्सर यू लिस्टनर बिल्कुल मैसेज मिस्टर वाला जाओ बेचारा तब मैसेज देता जाओ तू तो मैसेज देर न रसी न बिल्कुल कहा मैसेज ला ठीक है ना न तुसे अक्सर आर ए क्यू लिखे सुख डाट वेर के मान से वड़ी के डर थी इधर से छुप आई क्या ना नुकता दाओ न वेर के बल्कि मान से कबड़ी के मोबाइल इधर तरह न जीरो बटन हुआ नो दगा डाउट वो न वेर के बल्कि जीरो बटन हुआ स्पेस पर दुई यानी किम वड़ी एक मान से कम अज कम सना सौ यानी दस वड़ी के वो यो खाली जगह चाहिए कि हम खाली जगह मिर्च सोवर था क्योंकि ना न बिल्कुल आगे पॉइंट ओवर के यानी नुकता होने लगे हुए चेकिम तो से मिर्च तो पर एक से रुद्र में ले देने ला बल्ज से रुद्र में न तो से बिल्कुल आगे जीरो बटन वाला ले देने ला देहार स्पेस वाला चेकिम निकला आगे वर के हुए न पर आर एक ही पमास के इस किस्म स्पेस मां वर के हुए देने ला मां डाट वर के हुए मां स्पेस वर के हुए चेकला आर एक ही ऊपर उसी बोले ब्यागे ना बदो यू स्पेस वर के हुए साइडो बिल्कुल दा तरीका चेकिम मैसेज अरुला बिल्कुल इन दा तरीका बने अरुला इंशाल्लाह चेकिम निकला मिस्टर रची जी बिल्कुल अर्थिंग प्रोग्राम से गप शप शिले और प्रोग्राम से किम सवाल अक्सर टाइम शोर रुके ना आगे से बिल्कुल सवाल रो वे वो कौन सा चीज है जो खुद नहीं जाती मगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है बिल्कुल इस प्रोग्राम ने सवाल चाहिए चेर न सी और बल्कि हाल चिकनिकाबरी बिल्कुल प्रोग्राम सवाल लाई नो पदेश लिसनर अरविंदी पछताने की बिल्कुल अर्थिंग प्रोग्राम से गप मुश्किल है वैसी और मैसेज के लिए आर उले उधर था मिला सही दो बेहद बेहद बेहद मनाना और बिल्कुल दसर सरा बिल्कुल हम नशना हुआ तो यो जहान मना क्यूट और शिकान तो यो जहान मनाना वो दसर सरा फटेगुल तो यो जहान मनाना वो दे सरा सरा ये नहीं नुमेर खुनुम दिन लिख लाई सही दो तो यो जहान मनना बेहद मनना और बिल्कुल अर्थिंग प्रोग्राम से यो बला खबर की मैं किसा दो हम नशना न बल्कि क्यूटर शहान मैसेज करा दे भाई ईद वाल प्रोग्राम में से खबर दो सर शेड्यूल लाई न बिल्कुल आखा शेड्यूल उदा दर सरा शहर के भी थे नंद पे चिकिम ने कहना चांद रथ शो टोल मिशनारा किम स्टाफ था टोलो कंबाइंड हुई चांद रथ की माशो दो आओ टोल कंबाइंड शो हुई देने ला सबो सबो माल टाइम की माशो दो आओ बिल्कुल आगा दे मिर्जो सुम रहा अर्जे गुण साहेब न बल्कि सबो माल टाइम की सुम रहा अर्जे गुण साहेबों दी आगा सबो की माँ दे सबो माल टाइम वो दे आगा तब ही न दिया दे सर सरा वृद्ध शोता दे गया विच मुश पशी नवाज के चार यो कास्ट किम ने कहना पुकुर से मशर भी वो देने लवा चे कुर से दिमोरी पो वेच राज भाई वेच जहां सबो माल टाइम वो देने लवा चे किम सेकेंड टाइम ले देने धुआं मोर से सटेम प्रोग्राम रुका बिल्कुल रुका वाला ची न पागे से बिल्कुल पहला सबो माल टाइम दे आठ नौ सात साढ़े नौ बजे पर वो प्रोग्राम दे मोल भी कदे साढ़े नौ रसा में वो कहो कहते ने लवा नौ रसा हो साढ़े नौ बजे रसोई की दे सर सारा ची किम दुआम की मो दे बारह बजे प्रोग्राम आखो रहे ना अखपल प्रोग्राम की दे सारा ची किम दी दे प्रोग्राम बल मजदिगार पांच नौ सात छह बजे पर और बिल्कुल रास भाई प्रोग्राम में पांच नौ सात छह सात बजे पर दो घंटे पांच और छह यानी पांच बजे नौ सात सात बजे पर वो दे रास भाई प्रोग्राम भी दस नौ ची किम कमर्शियल प्रोग्राम ने दी और पखपल जी बने चले जी कर दे डॉक्टर साहब दरमान क्लिनिक शो दो या इसम शोगो ने दी सिफात वाले दी दस नौ किम शोगो ने दी दो टोले पखपल टीम ने बनने चली दे सारा ची किम दस बजे की मा शो दो एस पे वाला पपेला शपा बने मो शो भी और सरम मोसर आओ दे गुल्ला लाहवी साइड नो बिल्कुल

0: मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
1: हर कदम
2: इंसान उगड़ा।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत पैगाम फैलाए और माशरे को जोड़ने में हमारा साथ दे।
4: دا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک تے دا قیامت پا رزبا ما تاہا خلق دیر نزدیوی سوک چی پا ما زیاد درود وائی منگو تاسو اللہ پکار دی چی پا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے کسرت سرا درود شریف وائی

बहुत ही जुग जुग जियो और खुश रहियो। सोग में जेते जेते के प्रोग्राम और विद आवाज में डेटिंग के जेते जेते के खबर बैठो तो प्रोग्राम के डेटो बैगम हर का लाए हो मशहूर में आवाज रखो तो ढेर पौधा बहतराम सराख पर प्रोग्राम निम बड़े माजी करके हर का लाए वेलकम स्टडी माशी और उनकी यहाँ प्रोग्राम के सारा बरखा खिस्तल शमूलियत का वाले से पार्टिसिपेशन का वाले से एसएमएस दे ला रहे जनाब काले ला रहे ऐसे एसएमएस पर अखबार में वाल मैसेज क्रिएट ऑप्शन के होली का कैपिटल के आ रहे अगे नफस पवेर के उस पेस अगे नफस तू से नो मिला के नो अगे नफस तू से शीर ठपा संदर खुशा शांति खबर मौजू हवाले सर खबर हम तो बेरो के 85-83 मरी यानी कि 8-5-8-3 मरे हाजिर तक वाले से स्टूडियो को नंबर माने टेलीफोन में बच्चे हम दूध आए बिल्कुल ठीक ठाक था ये आई का नाम शेराज भाई जब वो आवाज सीधा तो पर रुसावन और रिदुन को 0927-291-292 दिलारे काल से मिला 0927-291-292

back. आवाज रेडियो 88.4 कार्यक्रम प्रोग्राम तो सेवर वेनिम गडी मास जिगर मत वे लिखे छे आज रास के यानी कि रास के हमदर्द रास खान खटक हाउ तो से ठोल तो लिखे छे गुलगुल लिसनर शौक में चेते चेते के आवाज और भी साइलेंट एंड वायलेंट ठोल लिसनर था प्रोग्राम के डेटा बगम हर कल है

0: मुझे सलाम प्लीज मेरे वाला सॉन्ग जरूर प्ले करना ओके जी तुसे खपल नुम चिदा ने दली कला ऐसा कोशिश करो
1: आसमान
0: तमे फैसला होय छे मेकिटु जिगान स्वीट भाई जानी आईना हटक

ओके जी, नेक्स्ट मैसेज क्या कह रहा है? अच्छे दिल रुबाय। अच्छा भाई, जो उस गोधर की मत असंग ब्लैक का ओके जी, गोधर वाले संग दे ब्लैक को कोशिश कमोशा। थैंक्स द मैसेज का वाला दे पर।

थी, वजीफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की, दुने दुगीना डबीना तरसरी, दमख गंजा, दिमाग तुरवलों, दस्तर के लुंद तुरे हल्की, बिल्कुल सफा सुथराई गई। खुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम पे इस्तेमाल करा, जी जी कलाए तुसे इस्तेमाल की, दे तुसे ठोले मसाले बिल्कुल हालुशी, अगा दे तुसे दे मखीने, आय हाय, मख सफा सुथरा और मख स्पिन खान कवि गना। खुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम शर्तिया मखस्पिनवी दुगीना डबीना तरसरी आओ जनाब दिमाग गंजा दिमाग तुरवलो दस्तर गिलुंदे तोरे हल्के बिल्कुल जी खत्म कवी नो तुसे जरूर इस्तेमाल कीजिए आओ ददे प्रांडक ना फायदा उखले। खेर दिए मोर दिन की प्रोग्राम सरा उर्वी कने उर्वी कवर भी ये चेरता है उर्वी। खुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम सराम खुजिफा कंपनी द विटामिन सी फेस वॉश जरूर इस्तेमाल कीजिए। दश पेटे मुतु से लगवाई अखाई अखाई द खुजिफा कंपनी शिफा

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

दरमान होम्योपैथिक सेंटर करक कचर ततासो पद से मरस के मुब्तिला किपा आगे के बवासीर पेस्टोला यानी खूनी दाना प्रास्टेट द गुर्दे पत्री द त्रिहि पत्री थायराइड ग्लैंड यानी कदुगाड़े रसूले ट्यूमर और कुन्निसा और दस्तरगो पर्दे छिपनोरो जयुनो के डॉक्टरानो तास्ता द ऑपरेशन वेलेदी नुतासोराशे दरमान होम्योपैथिक सेंटर था के अल तक की डॉक्टर मुस्तफा कमाल आर एच एम पी डी एच एम एस डी आई होम डी एस सी बी एच एम एस द होम्योपैथिक द दुनिया यो तजर्बाकार डॉक्टर बतासो इलाज बगैर द ऑपरेशन द मेडिसन पर जरिया बांधे कई और देना इलावा बे औलादी मर्दाना कमजोरी जनाना पोशीदा अमराज मैदे अल्सर और द मैदे जुमला अमराज और द शुगर मुकम्मल इलाज ब्लड प्रेशर और दजड़ जुमला अमराज शामिल दी। डॉक्टर मुस्तफा कमाल से पजदीद क्वांडम मैग्नेट एनालाइजर मशीन पजरिया बांधे द टोल बदन मैना कई और द दे सरा बतास्ता फेजोथेरापी द मशीन पजरिया बिल्कुल दरमान होम्योपैथिक सेंटर नखपल इलाज जर तर जरा दरला सके। पतेदा दरमान होम्योपैथिक सेंटर नैज खुशाल खान खटक यूनिवर्सिटी हीरो जनरल स्टोर ता बिल्कुल मखामा। मोबाइल नंबर ए दे 0331 12 12 413।

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: एट स्किन पॉलिश और डीप क्लींजर होम जिनार कॉस्मेटिक्स के अवेलेबल दी जिनार कॉस्मेटिक्स स्टोर प्रोडक्ट बस्ता सुता बहर जिन स्टोर एंड कॉस्मेटिक्स और पमेन करक सिटी के बा आर जे रेहान हटक लेस एंड कॉस्मेटिक सेंटर के बा पासना इस तरह मिलवेगी
1: अपने वतन की तरक्की के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बाए हुब्बुल वतनी का शुक्रिया। पाकिस्तान में इंतहाई कम मार्कअप पर रोशन अपनी कार से गाड़ी हासिल की और अपनों की जिंदगी में खुशियां फैलाई। आज ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट विजिट करें और रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं।
2: ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों ओजरियों और दीगर बाकायात गैर मुतायन शुदा जगहों पर हरगिज न फेंकें। ये अमल बदबू तअफ्फुन और वबाई अमराज का सबब बनता है। मजीद बना खुली जगहों पर फेंकी गई आलाइशें गिधों कौओं और दीगर परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं, जो सिविल एविएशन के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं और फिजाई ऑपरेशन के लिए संगीन खदशात पैदा करती हैं। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर की जानिब से फराम करदा बैग्स में आलाइशें बंद करके अपने घर के सामने रख दें, ताकि मुतलका सफाई का अमला उन्हें बरवक्त उठाकर मुकर्रर जगहों पर मुंतकिल कर सके। बराए करम सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं, माहौल को आलूदगी से महफूज रखें और अपने शहर को साफ सुथरा रखने में इंतजामिया का साथ दें।
3: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چه کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چه پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
3: واہ بیاو زهم غانم چه زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چه صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملویگی
4: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا هر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملویگی
5: हो या रात खुशी हो या तन्हाई हर वक्त एक आवाज साथ हो रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे

0: कल की यादें, आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त आपके साथ।
1: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क। रेडियो अमन नेटवर्क, वन रंग अमन।

0: बिल्कुल सरोरी प्रोग्राम यानी यानी प्रोग्राम बिल्कुल यानी इद मैराथन स्पेशल ट्रांसमिशन आगे की चांद्र सोदा बिल्कुल आयशा बिल्कुल गुल लहार सर मौजूद है सफदर लहार सर मौजूद है और सुमरहा रेडियो 98.4 कर सुमरहा विदिंग की आका मशरून दी कशरून ने हमजुल दी अब ये कोने दा कोने दी लाते ने लाते ने लावा वड़के वड़के छोटा क्यूट क्यूट मशमोन प्रोग्राम सरोरी टोले दा प्रोग्राम शेयर कलाई सडी माते यूजुअल वेव वेलकम इन आई ओके बिल्कुल फर्स्ट टाइम प्रोग्राम चार बदलाई वो फर्स्ट टाइम लिमिट प्रोग्राम किनकड़ई ना बिल्कुल मुताबिक इंजीनियर मसूद और सरम सरसरा सफदर लला और सरसरा गुलला बिल्कुल मौजूद थी और प्रोग्राम से गप सब मशलाएं से रिदाई और सरा और सरा बिल्कुल सब बोच किमने केना यानी देखिम इद मैराथन स्पेशल किम ट्रांसमिशन दाई आगे प्रोग्राम बिल्कुल यानी किम शेड्यूल ल रियो शांति यो नजर दर दबा जाओ जे यार अक्सर से अरविदिन की चन्नूर प्रोग्राम में शाम बिल्कुल दर सरा यानी शामिल करा जा शेड्यूल कभी यहां पता नहीं बिल्कुल तो सुन सरा शेड्यूल किम प्रोग्राम में दी बिल्कुल सुन सरा नोट के सब वाले मोस दे 8 9 साढ़े 9 बजे पर आप प्रोग्राम बिल्कुल डेमो वाले भी यानी इंजीनियर मसूद वाले भी दे 8 9 साढ़े 9 बजे पर और सर सर अभी आज किम 12 बजे आपको दे रहा नकल कमर प्रोग्राम दाई और दे सर सर मोस दी घर दे 5 बजे 9 सर 6 बजे पर आप प्रोग्राम बिल्कुल दे यानी रास के यानी दिमिदार रास भाई वाले प्रोग्राम दाई बेदर स्पीकिंग प्रोग्राम दाई आगा बिल्कुल जकदर सर कचर तक के मिर सर दसे नो सुकार सर चैट के दल नो बिल्कुल आगा मिस प्रोग्राम तर सलाशी और दे सर सर जिकिम ने बिया सब मोबाइल टाइम तक किम ने गाना बल सब मोबाइल टाइम ता आदि तारिक भाई वाला बिया दे 12 बजे किम प्रोग्राम दे आओ दे मो दे सर सर गुल्ला लवी मोबाइल चिकिम ने इज द सेकंड डे मजदिगार किम प्रोग्राम दे आदि सफदर लला और सर सर अख्तर नवाज लला प्रोग्राम ही बिया दे स्पीकिंग प्रोग्राम दे आदि रा दे मैनेजर साहब उद शायद खान प्रोग्राम दे और बल चिकिम ने बिया ड्रेम और सब मोबाइल टाइम बिया दे तारिक भाई दे और सर चिकिम ने कहना बिया दे वृद्ध प्रोग्राम वृद्ध हो रेहान सर मजदिगार बे किम प्रोग्राम दे आगाश बिल्कुल बिया शेड्यूल मुताबिक चिकिम यानी कसोन कसी चाहा दे प्रोग्राम दे चाउ रुद्रमी बिल्कुल बिया दे किम मैराथन किम स्पेशल किम ट्रांसमिशन लास्ट डे चिकिम प्रोग्राम दे यानी कंबाइंड शो भी पाइश गुल अल्लाह भी सफदर अल्लाह भी जो तारिक भाई भी दसरा राज भाई और नूर चे सुमरा अख्तर नवाज अल्लाह आओ हवीर सर का शायद रुता आगा हुआ सर भी नरविदीन के गाफ समक्षला भी सफदर अल्लाह
1: बिल्कुल जी बिल्कुल گانے ہوا کی ڈیر خوان وکار او مشترا دے مرجیو بل ہاں دے سعودی نا مرجیو ملگرا یاسر خٹک کا پروگرام اور بھی سلمون اللہ شلی دی بل اللہ تا او سرا ایم ایس ڈی توتا او دا ہے چے دے کرک نہ بلکہ دے ٹول پاکستان نہ بلکہ دے اہل اسلام سمرا مسلمان شدی اگوتا دے مو طرف نہ سبوتا دے اغا تختر ڈیر غٹے غٹے خوشالے مبارک شاہ او یہ چے دا غشا رڈو مجا مکھ تو فیس بک استعمال وال فیس بک مبان کا اس مجا ڈیر مشکلات کیو ہوسٹل مند بالکل دا پروگرام نہ دشا کر چی ہوئی تو شہر گول اللہ ہاں بار بار پوچھتا نا گولا چی